नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को, और आप सभी हमारे साथ दोस्तों सुन रहे हैं यस एफएम ज़ोय 100.7 और आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार जुड़े हैं आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों आप सभी कैसे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आप सभी कैसे हैं और कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई और आप सभी ने अच्छे से नींद ली है या नहीं। ये सब आप मुझे अपने संदेश के जरिए बताइएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए अच्छे से बीते दोस्तों, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का हमें इंतजार रहेगा दोबारा यस। और आप के लिए आज हिंदी के खंड में हाजिर है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली, और आपकी दोस्त आरजे वीएली प्यार भरे बातों को करने के लिए, बातें को करने के लिए दोस्तों हाजिर है आप सभी के साथ। और हम ढेर सारे बातें दोबारा करेंगे इस एफएम ज़ोय 100.7 पर। अगर आपको भी हमसे बातें करनी है, कुछ कहनी है, अगर प्यार का इजहार इस एफएम ज़ोय 100.7 के जरिए करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल आप सभी का दिन, आज की सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई होगी। तो चलिए, आज के इस 8:30 बजे से लेकर 9:20 तक का साथ देंगे आपको, गीत सुनाएंगे हिंदी के बहुत ही अच्छे अच्छे गीत, सुंदर सुंदर गीत दोस्तों। और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने काम अच्छे से करें। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप बहुत ही सावधानी के साथ चलाइएगा, ठीक है, और अच्छे से पहुंचना, अच्छे से करना अपना काम। तो चलिए, हम भी अपने इस आज के इस हिंदी के सबसे पहले खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, दो दिलों की कहानी, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का, सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत दो दिलों की कहानी आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और इस गीत को गाया है उदित नारायण जी और अनुराधा पोलवार जी ने। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, दो दिलों की कहानी। यस, दो दिलों की कहानी कितनी खूबसूरत होती है ना। और जब एक दूसरे का प्यार जब हमें महसूस होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। जब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, तो हमें मतलब इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना दोस्तों। तो चलिए आप

का किसी के साथ भी हो, प्यार हमेशा जिंदगी भर चलता रहे। यस, और इस FM से 100.7 के साथ भी। और हम आपको बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, आप सभी FM से 100.7 सुनने वाले दोस्तों को हम बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि आप हमें सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप हमें संदेश भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए, आपके संदेश आ रहे हैं। जामते गांगते पाते मिंगमोयते अते कोंगते अते कोंगते मैसेज ngat phe hi chu zing kan first segment a aron then hi chuan chang sang hi kan in ting hoi ngoi ani ti kha ama nge khan min lo sha se और हितेंद्र दास जी की तरफ से भी संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ूंगी आपका संदेश दोस्तों, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मैं अगले गीत की तरफ चलना चाहूंगी, आपको गीत सुनाना चाहूंगी। इस गीत के सुनाने के बाद मैं आपके संदेशों को मैं पढ़ूंगी, ठीक है? यस मैं चाहती हूँ कि आप हमारा इंतजार करें क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमें छोड़कर कहीं चले जाए छोड़कर चले जाना अच्छी बात नहीं होती है ना दोस्तों? इसलिए आप भी किसी को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? हमेशा साथ रहना, चाहे वो बुरे हो या ना बुरे हो, तब भी कभी कभी भी उनका साथ मत छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है? अच्छा नहीं लगता तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत है जानिसार, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत, यस जानिसार गीत आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों, अब हम चलेंगे आपके प्यारे प्यारे भेजे गए संदेश की तरफ, और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी हो चुके होंगे और आप निकल भी चुके होंगे, है ना दोस्तों। यस, 9 बज गए हैं सुबह के, और आप सभी ने सुबह का नाश्ता कर लिया होगा या फिर अभी तक नहीं किया है, तो आप जो भी करेंगे आप सभी अच्छे से करते रहना। तो हम चलते हैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ, और सबसे पहला इस खंड में मेरे लिए संदेश आया है मेरे दोस्त वी कुंगते जो दारे ले मित सोमगा निता जाम चूर या ले मित सोमली पंगा जाम का दी दुर्गा कुंगते कलो दी दे बला चुआन जाम हियान हेलो आर्जे वी अल नमस्ते सुप्रभात वो इंट्रेसेल ना चाने आट वांग तका इदिव दी थे नान ले mahun lo omzel tura po pathian ompuina le kaishwana du om taki chanthaina du sakna itan ka hlane replay li sami zong zong kha i duty pui turnen intan le control room a duty le duty officer tan po vo in hun man nuam le ron ti ani chama hian nga tinge jam u tri pi ai mai daya wen zung tinge i mai dai le o tinge le o Zwang hakte bayan arche vil namaste ihla play le turkha mun mo nu nong apiang du zel mai pani kungte ya o kungte boron dilo vi kung lera jelal zam lera jelal zam lera

Namaste, aapko bhi mingmoy te. Oh, chuan, kung te ahi na jemon VL Joker, za lalzami sandesh chu, chiar su o, amit, amiti dan, kalung oilaw aron ti le, taday, tani, lung oilaw, lampang soy oilaw. Oh, kaning kom tiyal dialang, oh, RJ VL omi chuan kaning kom tiyal dial tur hini top may ni. Ole chuan, oh, filhal, मैं पूरा पढ़ लेती हूँ आपका संदेश और हितेंद्र दास जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजे जी यस आपको भी गुड मॉर्निंग हितेंद्र दास जी आप कैसे हैं आपने क्या आज की सुबह अच्छे से शुरुआत की है या नहीं तो हम चाहते हैं कि आपका दिन अच्छे से बीते और दुर्गेश जी ने लिखा है यस दुर्गेश जी ने भी हमें विश किया है गुड मॉर्निंग आरजे नमस्कार आपको भी गुड यस आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते ठीक है दुर्गेश जी और इज्जत साइलो ह्यान ललवान से बेले ओले नंगपो से बेले ओ चौन निमिन इ ओमलावा कन किंग बाई हुई मैं ये लो मरंती ने अने वो चुतियामी को ओइ लो भैया ओले इनपो चुनी से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से आरजे वीले की तरफ से आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7 दोस्तों और हिंदी के खंड में दोस्तों आपके साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीले और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीते दोस्तों और आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चलिए अब हम चलते हैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ और यस संदेश की तरफ नहीं गाने की तरफ तो चलिए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से लव स्टोरी आप सभी के नाम

यस, बहुत ही प्यारा सा गीत दोस्तों, प्यार का मतलब रब होता है। बहुत ही ठीक कहा है इस गीत को बनाने वाले ने, लिखने वाले ने। यस, प्यार का मतलब रब होता है। जिनके पास रब होता है ना, उनके पास प्यार तो बिल्कुल होता ही है। प्यार मोहब्बत एक रब है, तो आप ढेर सारा प्यार एक दूसरे के साथ निभाइए, करिए। और हम भी आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके संदेशों को हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। यस, और यहाँ पर मेरी दोस्त जामही अनार्जेवियल इमो एफएम से ओय गाइटले तू तितान गाकलेल बेर चुमो कन्हालेल बेर चुमो छून लमा हिंदी सेगमेंट बी का एफ बी अ लाइव थीर थे हुन ही कन्हालेल बेर ओ विकुंग लेर थाका लुंग ओय लो ते मई मई चुमो इंगा मा थोक तीर सु अलेर थक लुतु कनी खा लो लुंग ओय लो मई मई ते से अंदिंग मई थे नी ओ तिचुआन वो इना खान आर जे ओ फिलील रोन लाइफ डोन खा ओ इन लो जॉइन वेक लोम अंगा thunin lo man pui le dial dial lang chu tro ole chuan elzat sailam hian nimin chu king ba ye lalwan zama phei chu dar le lam sa thlak ang vel ani ka oi chia lo kan lo nem be thiam mang si lo wa aron te ani elzat sailam hian ka oi chia lo e zam chuan lal din puya falkon hian RJ play le tur kha nang ma tan le longai thabe zong zong tan le RJ zong zong tan le dor puya ka thian te zong zong tan aron ti ani ole alomom chine bahut bahut shukriya aap sabhi pyare dosto ko aur dosto ye is khan ka aakhri geet hoga yes aur मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप सभी का मुझे प्यार मिला संदेश के ज़रिए। आप सभी हमें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हमारी तरफ से भी आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीते, और जैसे कि मैं यस आर जे वी एली कहती है, अक्सर कहती, हमेशा कहती है कि दिन की शुरुआत एक बहुत ही मुस्कुराहट, बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट के साथ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एक मुस्कुराहट आपके दिन को, समय को बहुत ही अच्छा बनाता है दोस्तों। तो चलिए, आप मुस्कुराना मत भूलिए, ठीक है? यस, अगर ना चाहते हुए भी आप मुस्कुराइए, ठीक है? आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है? तुम बोल तो अंतमेल छे लो बोगनी तरो चुवाइन। आप सभी मुस्कुराइए, हंसिए, स्माइलिंग फेस का हन्ने सांग मैं उला तो लगा पो खान, ठीक है? तो आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीतेगा। तो चलिए, हम वापस आएंगे अपने हिंदी के खंड को लेकर दोबारा 10:40 पर, ठीक है? यस, 10:40 आकरण के लिए दोना। और यस, अगले खंड पर आपके साथ वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए आपकी आरजे ऑफेली हाजिर होगी। तो तब तक लिए दोस्तों, ये आखिरी गीत पल से मैं विदा लेना चाहूंगी श्रेया घोषाल और अजीत सिंह की आवाज में गाया गीत। मेरी तरफ से आप सभी के नाम और आरजे वेली की तरफ से दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सुबह का नाशा नहीं किया है, उन सभी को आरजे विली की तरफ से चोए दुवे को ओ, और जो जो अपने कामों के लिए जा रहे हैं, सही सलामत पहुंचना, ठीक है? यस, तो ये आखिरी गीत इस खंड का मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी प्यारे, यस, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM जो 100.7 दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के खंड में जुड़ी है आप सभी के लिए आपकी दोस्त आरजे वियली। और आप सभी अपने अपने काम कर चुके होंगे, स्टार्ट कर लिए होंगे और अपने अपने कामों के जगह पर आप पहुंच चुके होंगे, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, खेत हो दोस्तों, यस, और घर पर भी आप दुकान में, यस, घर में, दुकान में, खेतों में दोस्तों, कहीं पर भी हो आप, जैसे कि आप सफ़र के लिए जा रहे हैं तो आप कहीं पर भी होंगे, कहीं पर भी जाएंगे, जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम चाहते हैं कि आपका दिन अच्छे से बीते और आप अपने काम अच्छे से करते रहें। तो चलिए, आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो हम अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और सुनाना चाहूंगी इस खंड का सबसे पहला गीत, चलते चलते, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत यस आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और ज़िंदगी ने हमें सिखा तो दिया है कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीदें ना दोस्तों किसी से मत रखिए, ठीक है। बैसे नहीं हन्ने सांग लो फोत मेला तो तेलका पोहियान अच्छा बेर नहीं मई तेरा। और वैसे भी जिंदगी एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए, है ना दोस्तों। यस, तो अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और मैं अगला गीत सुनाना चाहूँगी प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे। यस, बहुत ही खूबसूरत गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी।

디야 올해 그 럼루 두께 어 뭐야 전 미번 러브 비컨 비아전 오메가 상태 현 바티안 첫 지아 히츠 옹 에즈왈린 그 SMS 아 한티아르데 SMS 톤테야 시셀나 차 아네 SMS 톤테야 시셀나 차 그네데 아마가 이나와 아마가 이나와 amangai na wang ani chiang em amangai na wang awa awani chiang em risena chane lim takin hun man nuam le aron ti ani omega sang te hian omega sang te poi ton la chumin be tra do law reng reng mo a omalom omalom ti to meyang एंड हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है. हितेंद्र दास जी ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग आरजे जी, नमस्कार, आपको भी नमस्ते. हाउ आर यू? यस, आकाशवाणी आइजोल स्टेशन FM जो और बैंड 100.7 MHz, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग शो. आई एम ट्यून इन रेडियो बाय बुक्स एंड वर्किंग माई वर्क एंड वर्किंग माई वर्क. यस, वी आर फाइन Hitendra Das ji, and we hope that you also are fine, and thank you so much for your message. Or paenga ki taraf se sandesh aya hai, paenga hian RJ angai tukin i thau nuam em o thau nuam ani mei paeng ma se mut ka kham lo top ta ni chumo len kwal na tur i len kwal na tur i len kwal na tur i ha thei enge len kwal na tur i inga ve thei si ya ti om takania takin so in message ron thoni abuai ve de unuai mai a chan nikina kalo chha chaleng o lo edit chale mai ro o pa eng ka chha lo lo lo mai ang o lo en chale mai la tro chuan kongte hian rjmo vl ka u jedal za ma khani u tri pe ate a mai lui vela tero jedal za ma aya le sang tam taka i du zo ka ni si ya mai thiang lo shim shim isha bok lo kongte kabyak awa kabyak wang kabyak wang a cha ini lo i cha sa ka ngai zwal ron ti be nui na turing a thi in lo zonga nang ni ho chu a boi thak nui hi ka chak bak lo sin jil om te ro te chali fil hal bahut bahut shukriya aap sabhi pyare dosto ko. Aur मैं चलना चाहूंगी अगले गीत की तरफ. अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को. प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे. मंगाइना हियान रोसुम ले पाही अन एन अन एन गाय लवा थिन लुंग ही अन एन छिन नी ती तही हन छथर ले इला तरो कन रिन ओमा इन ए मंगाई ना खा इन थिन पन लो नी से ए कन रिन ओमा इंगे अन ताना कन इन पुम पेक ने तिखा अलू एम एम ए सिया तेरा ओ. तो चलिए प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गाए गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। और कहते हैं कि कभी कभी पूरी जिंदगी का प्यार कम पड़ जाता है, प्यार तो बस एक ही से मिल जाए ना काफी होता है ना दोस्तों। तो चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और अगला गीत अगले गीत के सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और संदेश आया है मेरे दोस्त जामे की तरफ से। जामेहन अर्चिविल नमस्ते, नेक्स्ट सॉन्ग दुर्गेश जीले हितेंद्र दास असम तानपो ओ तीन अपवांग तू मई म्यालविन कऊकुंग लेर थक मंगाई न सिम ओम जिया थियामा mangai na sem zai thiam tinan yang tro zam tan chau tan chuan na hi o ron ti a zam hian ni etrom kong te hi mangai na hi a sem zai thiam khop mai lb rent le hian a jevil good morning le inui ri le i o moi sha thi chuan kan har song song mai lom i play le tur khai tan le fm zo oi ngai le tu song song tan ron ti a lom om chin le mai lb rent le message han chiar hi anwam chin ka ti alim om ka ti chan omega sang te hian veimim tui tau mai thlalak min ron thon le nga la mi la hi ofik thiam bok si a engpo chuni se alom ome ka eight luka ka in nga yang o to chaliye filhal sunte hain jab kisi ki taraf dil chukne lage meri taraf se aap sabhi ke naam

उसकी खुशी। वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों यस, हमारा समय 11:20 तक है और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी से बहुत ही ढेर सारी बातें तो करनी है लेकिन समय नहीं होता है दोस्तों हमारे पास आपसे ज़्यादा बातें करने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपको ढेर सारी बातें भी गीत सुनाए दोस्तों। यस, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों बार बार कुछ गड़बड़ बातें कर रही हूँ। चलिए, जो भी हो आपके प्यार के कारण ही होगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि कभी कभी पूरी ज़िंदगी का प्यार कम पड़ जाता है, प्यार तो बस एक ही से मिल जाए तो काफ़ी होता है, तो क्या करें, ज़िंदगी है। तो चलिए मैं अगला गीत सुनाना चाहूँगी आप सभी को, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर मेरी तरफ से। और आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM सोय 100.7। दोस्तों, और आप सभी का दिन कैसे बीत रहा है दोस्तों? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम सुवीनियर के लिए फोटो सेशन के कारण आपसे अच्छे से बातें नहीं हो पाई है, लेकिन अभी फोटो सेशन हो गया है पूरा। और हम हाजिर हैं हिंदी के खंड के साथ आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने के लिए, और हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा दोस्तों, ठीक है? और आपके समय को और भी हसीन बनाते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। तो चलिए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत, छाया है जो दिल पे, क्या नशा, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत छाया है जो दिल पे क्या नशा, आप सभी को शान और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक गीत, आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा। और हम आगे की तरफ चलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको गीत ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि आप उदास हो, सैड हो, और ये मत सोचना कि हमारे पास कोई बातें करने वाला कोई दोस्त नहीं है। ऐसे सब मतलब इस तरह आप कभी मत सोचना, क्योंकि FM ज़ोन 100.7 पर ना आपकी दोस्त RJ वियली हमेशा आपका साथ देगी, आपसे बातें करेगी। ठीक है, अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो हंसाते हो, रुलाते हो कुमार सानू, नहीं अभिजीत चक्रवर्ती और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत मैं सुनाना चाहूँगी इस अगले गीत में। और मैं आपके भेजे के संदेश की तरफ चलना चाहूँगी। मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है। मेरे दोस्त जामा लिखते हैं कि हेलो आरजे, नमस्ते। ओ नमस्ते आरजे वील, नमस्ते, गुड आफ्टरनून अरुंती आ ओले नंगपोले ओ जाम, अ वेरी गुड आफ्टरनून नंगपो ओ चुआन इन सपाई खान, जो भी हमें सुन रहे हैं और चुन हुन मन नुआम नंगपोले ओ जाम, नेक्स्ट सॉन्ग इद्यूती पुइनेन इन तान ले उत्री पियांगुर द्वा तो पातान ले नागते पा बिल्कुल हिर मई म्या लविन अरुंती अनी उत्री पे ते चुलम से पोंगाई खेर लाओ मिन गाय लो ए मे त्रो आई इन दूसी सन सक पो गाय लो मैसेज पो रोन थोन से गच्छा लो वांग स्वान अल जेट साइलो।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को हंसाते हो, रुलाते हो। अभिजीत और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को पसंद आया होगा। यस, इस तरह रिलेशनशिप में कभी हम एक दूसरे को सताते हैं, रुलाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिश्ते को द एंड कर दें। तो ये सारी नाराजगी, एक दूसरे को छेड़ना, ये सब रिश्ते को ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। तो आप किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप रखते हैं तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों कि जिंदगी भर आपका रिश्ता हमेशा कायम रहे और जिंदगी भर चलता रहे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं FM ZO 100.7 के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि हमेशा जिंदगी भर हमारी दोस्ती चलती रहे, है ना। जाम जाम थिल के शिलंग से ओ उची पे मैसेज और थिंग लो मैं मो So, and very unexpected more things. A message ke dong le lo zela boy de kara hian chan mo zam uchi pia hian ti hian ron ti a kalom don nge kalom lo don nge ke shathiam lo ta ni chu a message mo ama mak the ye o ron ti ni chu masa bera chan mo zam lo ngai thachang ro chan mi lo shil don ya thin rim tur nge thin rim lo tur po ka she thiam ve lo chuan awa mak thei o

搿只会入啊，接接啊，读一幕。background music allow rigs 呀，没出来，阿伦迪尼哦，嗯，咋我去别下？一定个地段，个林段个，个位段，个地道段个。Om zia, inge, inge om zia. Ka background music ha, inge, angay la du lao tina mi, mo za, min ning tina ani donem, ninna chong kam ka ani tayang em. Mo za, min lao shilte, oh. Zan abak, zan next messenger on ton le an, hei hitu kan ke kalde de ang. Kati, oh,莫我咱们聊十多年，哦，个地道多年，地道多年了。我嘞不从你说，都真个非常没苏娜娜招呼的，而且心情还是没改的，舒坤米拉 ，yes， 把这酷帅的真个顺听，从我这边，阿斯米克纳，而且很，该个很个，嗯，意思，马斯克的哇，哦。जिन्होंने मुझे संदेश भेजा है गुरुद्वारा के लिए ये अगला गीत आप और यस उनके लिए भी और आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को सुकून मिला बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, और कहते हैं कि जब हमें सुकून मिलता है ना किसी से, तो ऐसा लगता है कि वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल इंसान है। यस, जिसे हम बहुत ही चाहते हैं ना, उनके पास हमें बहुत सुकून मिलता है। तो आपको भी ऐसा फीलिंग अपने दोस्तों के साथ या किसी चाहने वालों के साथ मिलता होगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको ज़िंदगी में बहुत सुकून मिले। ठीक है? यस, सुकून बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सुकून बिना जिंदगी अधूरी होती है। ठीक है? सुकून का अपोई मोता है मैं नहीं चुमो शादी के बाद भी, और शादी के बाद भी अगर आपको सुकून नहीं मिलेगा तो वो मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन जब आपको सुकून मिलेगा ना, तब आपको ये एहसास होना चाहिए कि वो इंसान बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। ठीक है? यस, तो अब चलिए उटोपिया की तरफ से जो संदेश आया है वो मैं पढ़ना चाहूंगी। उटोपिया ज्ञान कनाओ पत्नी जगह जाम ले।

Is This Love? 뭐하디 곱스런 기드 뭐 히초한 오시아고 샤케 바스미카야 기드 아 세비고 제로 파사나야 호가 Is This Love? 무제 예 기드 보디 파산 헤 or 아메 우미드 카르티 호 키 아프코 비예 기드 파산 하라하 호가 메레 도스토 or 아프 로그 이트네 스위트 호나 키 아프세 요히 바테 카네 카 मन करता है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का समय अच्छे से बीते खुशियाँ और बहुत ही आनंद से आनंद के साथ और मैं चाहती हूँ हम चाहते हैं कि आपका काम यस अच्छे से चलता रहे और साथ साथ हमें सुनते रहना यस क्योंकि हमें आपके भेजे गए संदेशों का इंतज़ार रहता है और तो चलिए मैं जल्दी से चलना चाहूँगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ और संदेश आया है केवल ट्रेन में सेश कर दूंगा और यस अगला गीत मैं तेरे दिल का मेरे दिल से यस गीत सुनाना चाहूंगी मैं आप सभी दोस्तों को और यस चलते हैं आपके संदेश की तरफ और संदेश है केवल ह्यान और Uchipia lam chung kan tam zog. Chan bo ngai lao. Kung te zo. Kung te a zo te upa a upa tu hersa shi fiat yam kane lom. Aron ti pe la tuan kasoi fiat yam dan ber a tuan. Kobung alatita deu deu ang ti angin kabau mak. Aron ti dai mai ni ron chil fia do ne mo ka tia ka lo chit sak em ema bu ke wala tu fer lo em ei tan ba eng hian vl ke wala khan eng e aron soi ve ang o ron enroll ve lo se a cha ang aleng to lo a to to lu tuk a to to lu tuk ti lai ta kha In vandu om lom takem In fel lom si In ril ruo cha lom si Tu le la te hi In tiam lom bok si a In trong kam chwak te hi Ngay tha ka na bok si a cha Kung te a lo lang let la Mai Enge ron soy ve ang o Rajwe mon VLK2 primary channel lam nula ungur silo in souvenir le t-shirt min ron thun don big big ron tini e khai van chang sang thai tak em o van lom om em alom nan a next song hi ungur ta le kong te tan kan thla nang o to chaliye filhal main sunana chahungi aap sabhi pyare doston ko tera tere dil ka mere dil se rishta purana hai यस आप और हमारे दिल का रिश्ता इतना पुराना है कि कभी भी नहीं मिटेगा अगर आप मिटाने के लिए कोशिश करेंगे ना तो हम आपको मिटाने के लिए मतलब आपको नहीं हम ट्राई करेंगे कि आप नहीं मिटा सके ठीक है यस हम जितना हमसे जितना हो सकेगा ना हम FM Zoho 100.7 पर आएंगे आपसे बातें करने के लिए ठीक है तो चलिए सुनते हैं तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है आप सभी के नाम

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, दिल क्या करे। ये दिल क्या करे। गाने का तो मन है लेकिन मुझे नहीं आता है गाना, गाना मुझे नहीं आता है। और यस, चलिए यहाँ पर केवाला की तरफ से, केवाला ह्यान पाएगा गोई मकरो से आइजोल स्वालम ले लागलमा पाएगा खान अहुं क्या तो अनियाओ मिरिन मिरिन ओम तक पार पारी पु चोंकम छुआक अन्नी चांदू नी अनिन में एतरो अनक्यूट बॉक्सी आनी देखान ओ मिनरोन ओ कन वंग वंगा अनरोन लेग वंग वंगा आ थे नी से चुआन कन था हो दुन तुर निया बासे कल थियाम चियांग चिया बॉक्सी लाओ मो मोटोर खलवेल खा कला कॉन्फी लुटुक लवा कहन थी लियाम कसु कखों गई दोन लुटुका मासे अन्नुन खा हे कफील थे नी चो अनुआ मंती था खा अमुआ गोई गोई अन मानी खा अन था खा अमुआ गनी चो अन लाइफ मन खा अनुआ मंती आ कचियांग ओ तो चलिए फिलहाल हमारा समय भी खत्म हो रहा है।

Ngorawa aron thon leya ke valhian UVL ke chu in me ka ti lo an in san le e mai an in san le vel kha lom in me em em te chelye filhal ye kant dosto is kan ka akhri geet hoga aur मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर 2:05 पर, ठीक है, 2:30 तक आपका साथ देने के लिए, ठीक है, यस. और जाते जाते मैं आपको एक बात, यस, बताना चाहूंगी, और यस, कि मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है. हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर हम जब जिंदगी का साथ नहीं छोड़े तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े, है ना दोस्तों. यस yes. अगर हमें मोहब्बत किसी से नहीं मिलती है, अगर हमें मोहब्बत नहीं मिलेगा तो भी आप मोहब्बत करना मत भूलिए. मैं भी नहीं भूलूंगी चाहे मुझे जिंदगी में मोहब्बत में धोखा मिले या ना मिले, मैं तो मोहब्बत करना मतलब नहीं भूलूंगी. और मैं आप सभी से मोहब्बत करती हूँ और मुझे भी पता है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमें हमेशा सुनते हैं, प्यार भरे संदेश से हमें खुश करते हैं. तो हम चाहते हैं कि आपका दिन, आपका समय, यस, और स्पेशली इस FM ZOY 100.7 पर हमेशा, यस, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही खुश और आनंद के साथ आप समय बिताते रहें, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं 2:05 पर 2:30 तक दोस्तों. तो मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर. और अभी जो इस खंड में जिन्होंने भी मेरे आप सभी दोस्तों ने मुझे संदेश भेजा उनके उसके लिए मैं आप सभी को मैं आप सभी का शुक्रगुजार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी ने मेरा साथ दिया दोस्तों. तो चलिए आप सभी इस गीत का एंजॉय कीजिए और मेरी तरफ से, आरजे विली की तरफ से, लव यू ऑल और आप सभी का दिन अच्छे से बीता रहे. तो चलिए ये दिल क्या करे मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए.

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुन

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को फिर एक बार आरजे वेले की तरफ से। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM 100.7 दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी अच्छे से अपना समय बिता रहे होंगे और साथ साथ हमें सुन भी रहे होंगे। और फिर एक बार आप सभी प्यारे दोस्तों का इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे प्यारे संदेशों का। तो मैं नहीं चाहती कि आपका दिन यूं ही बीते बिना खुशी और आनंद से, इसलिए मैं हाजिर हूँ फिर एक बार हिंदी के गीतों के साथ। तो चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं। और ये खंड ना दोस्तों आज के लिए मेरे लिए आखिरी खंड है। तो सुनते हैं मेरी तरफ से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत है या हो आप सभी के नाम।

यस, बहुत ही मस्त वाला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, है कि नहीं दोस्तों? यस और नो, आप बता दीजिए कि आपको गीत पसंद आते हैं या नहीं आते. आप गीत फरमाइश तो करते नहीं हैं, तो चलिए, आप सभी को गीत पसंद आ रहा होगा और हम चलेंगे अगले गीत की तरफ. और हितेंद्र दास जी की तरफ से संदेश आया है. हितेंद्र दास जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून आकाशवाणी. ओ यस, थैंक यू सो मच हितेंद्र दास जी आपके संदेश के लिए. और हम चाहते हैं कि आपका समय अच्छे से बीता रहे हमारे साथ और किसी के साथ भी हो, ठीक है? और विकुंतया की तरफ से संदेश आया है, अंशमो भी अलवई ना लुंग ओइलो न ते नयम इ नै चा मिन लो शिलरो नै चिया ने सवाल बॉक्सी आ उची पे जो मो हिंदी हन थोन लेकिन आ हिंदी हिंदी का थोन हिंदी इन थी लेंगे मनी जागिला हन थोन वे इला Oh, lo record nghe sẽ là cho mình lâu thôn về sẽ là chàng. À chia xóa về nốt nốt thoáng. Thế rồi sao? Tôi chỉ là phiền hại. Áp cái sản đếch cả anh tư giá rồi hề gà. Áp mẹ áp sẽ phí có sunana nà chá hùng gì. Kya hùa tujhe? Bhoat hi khúbصورت gít. Yeh gít mujhe बहुत अच्छा लगता है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ये गीत पसंद आएगा. और यस, कहते हैं कि दोस्तों मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, ठीक है? मतलब मोहब्बत में शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होनी चाहिए, है ना? जब हम मोहब्बत में शर्तें नहीं रखेंगे तो हमें अफसोस की क्या बात है, मतलब अफसोस करने की क्या बात है ना? यस, मोहब्बत में कभी भी शर्तें मत रखना, ठीक है? मोहब्बत मोहब्बत है, प्यार प्यार है, ठीक है? तो चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, हमेशा दूसरे के साथ अच्छे से प्यार के साथ आप समय बिताइए. तो चलिए सुनते हैं क्या हुआ तुझे मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

क्या हुआ तुझे? यस, आपको क्या हुआ? आप सभी इतने चुपचाप क्यों हैं? कंसगमेन मसा आखान कन ओ नोम खा कन तितलांग लो मिन कशिया आप गथिल छ्यार स्वा देख देखा मो अचेन देखा नन लो हिमपुई एम एम मया हमारे जो कैसा का हिमपुई एम एम चांग लवा कंते ते अचान खान मिजो चोंग हि चो लौजिर वे ला चोन त्यांग हि कन्ने बी खोम से लवा तिरो जाम कथिल छियार खा ओ माय गॉड हि नि तो मे नि आरोन तो दुबा ला चोन मिलर ऑन सोई सेल एम एम जुइ ले खा ला हे पिस्तोला इन कप ट्राई ट्राई अन खान मो ग ओम और तो चलिए एल डी शाह से अल्थियन आर जे वी अल्थुन हुन भन नुआम ले मोई देव देव खा लव प्ले जेरो ओ गन लव गाई था रिंग अनिया पंजाब एंड सिन बैंक अचांग इन प्ले ले तुर खा इद्यूती पुई तेन तेन एन इन तान रन दिन एल डी शाह से अल्थियन गन बन लोम छीन एम ओ मिन लव गाई था आ लोम ओम लुट तुके चान कुंग ते हियान छेन वंग वंग रो कउ जेलो जामन एन खान पत्सन लाक अन्नी in mangai na ko nga hi chuan in thren mai mai lo tur ani a in phatsan mai mai lo tur katyang thil te te te khachu kan relationship ti strong na tur te ani theya mo so wang chuan in mangai na ko nga hian in thren mai mai lo tur ani a in phatsan mai mai lo tur ani mo kong te ale to chaliye filhal main sunana chahungi aapko अगला गीत आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है बहुत ही खूबसूरत गीत सोनू निगम और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

Well, दोस्तों, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, हमारा समय भी खत्म होने वाला है, तो चलिए जल्दी से हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज में गाया गीत तेरे बिन। यस, तेरे बिन, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता है, आपके बिना यस एफएम ज़ोय अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, और आपके संदेश के बिना हमारा ये जो एफएम ज़ोय 100.7 है ना दोस्तों, ये पूरा नहीं होता है आपके बिना। ठीक है, यस। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो है कि मतलब लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, बस वही नहीं मिलता जो दिल चाहता है ना दोस्तों। यस, लाइफ में मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन जो मैं मतलब जो मेरा दिल चाहता है ना, वो मुझे कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। है ना दोस्तों, तो आप भी खुश होंगे ना कि आपका दिल जो मतलब आपका दिल जो चाहता है वो आपको नहीं मिलता है, तभी आप मतलब आप खुश होते होंगे ना। यस, हमें खुश होना है हमेशा, ठीक है, सैड नहीं होना है कभी भी। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं तेरे बिन मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी ने हमारे साथ अच्छा वक्त बिताया होगा. लेकिन आज हमारे यहाँ ऑफिस में सोवेनियर के लिए एक फोटो सेशन के कारण आपसे हमारे जो हमारे जो दो खंड में ना दोस्तों, आज के हमारे दो खंड में आपसे अच्छे से बातें नहीं हो पाई, इसके लिए हमें माफ कीजिएगा. यस, हम यहाँ पर बहुत बिजी थे फोटो सेशन के कारण. तो चलिए, आज का ये आखिरी खंड का आखिरी गीत आप सभी को सुनाने का फिर से समय आ चुका है. और आज आज तो मेरे लिए आज हाँ मुझे अच्छा लगा है आप सभी से बातें करते हुए, और आप सभी को भी अच्छा लगा होगा. और यस, आप सभी हमें सुनते हैं, हमें संदेश भेजते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप जिंदगी में ना एक अच्छा इंसान बने. यस, अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और जिंदगी में खुशी पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए, है ना दोस्तों. यस, जिसका दिल साफ नहीं है ना, वो जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगा. ठीक है, यस. तो आप जहाँ पर भी रहेंगे, कहीं पर भी जाएंगे दोस्तों, आप एक सच्चे इंसान बनने के लिए कोशिश कीजिए. और यस, हर कोई अच्छा इंसान है. अगर वो अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वो बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी है. एक मतलब अपने आप में एक अपने आप को कंट्रोल करना है ना दोस्तों. यस, तो हम चाहते हैं कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीते और हमेशा खुशियां ही खुशियां पाए. आज रसूर नोया अनल चेंग चेंग वे आंदी वेरनी ओले अल्लोम छीने. बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारा साथ देने के लिए. तो हमारा समय खत्म हो गया है, तो आप सभी को आरजे वीएली की तरफ से जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना. कल शायद हम मिल सकते हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकती. ठीक है, तो चलिए, आप सभी को आरजे वीले की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बे कूल. और कभी भी उदास मत होना, ठीक है, हमेशा खुश रहना. और मैं आप सभी से प्यार करती हूँ, और यस, आप सभी को ढेर सारा प्यार आरजे वीले की तरफ से. तो चलिए, ये आखिरी गीत तू जो मिला मेरे मेरे बदमाश उठी पिया का मनपसंदी गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी. तो जो मिला मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.

0: Hey, hi, Akashwani Aizol, FM Zoe, Zapoin, Pasari, Chengapon, Swa, Ani.
1: Akashwani Samachar ke saath, main Vishal.
0: Juni Som Pariyat, Sanghi Somhi Baru. Nilai Tho Chanatana kan hun vai khatna, kan zau tareng mai. Min ngai thatu te zong sum chunga lom thu kan suya. Kan hun vai ni ni, kai da li le chan vya kan chan le dona. Min lo ngai thale chak tu ring da som cha u. Kun man pui tu chau hi le was fili aji o fili kan ni a. Control room engineer duty hi si van lom puya. Ani, in zawa in ni man nuam vek ule.
1: Emmanuel Macron ke saath Vivatek sammilan mein shamil honge. प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे. सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा. ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा. विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा. प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं. यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया. इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे.
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं. पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए. ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी. केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रूपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया. न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है. चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं. सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा. मतगणना शाम 5 बजे होगी. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है. मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ. शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई. अमरीका और ईरान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है. इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है. स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है. समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है. समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा. वहीं ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा. इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है. इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं. हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया. भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा. उरुग्वे की चियारा एम्पेनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए. भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया. इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमदे। समय हो रहा है शाम के 5:30 बजे और इस भाग में हम सुनने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गाने। सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है वीर मूवी से राहत फतेह अली खान की आवाज में, सुरीली अखियों वाले।

ये था राहत फतेह अली खान की आवाज में सुरीली अखियों वाले वीर मूवी से। आगे बढ़ते हुए दुर्गेश नागनपुरी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि जी इन्होंने हमें नमस्कार किया है। दुर्गेश नागनपुरी जी आपको भी नमस्कार, हमारे साथ बने रहिएगा और अगला गाना स्पेशली दुर्गेश आपके लिए। और मैं प्ले करने वाली हूँ नाच मेरी रानी गुरु रंधावा के आवाज में, इशप्रीत की आवाज भी हम सुनने वाले हैं और तेजस का संगीत नाच मेरी रानी।

नाच मेरी रानी गुरु रंधावा तेजस और इशप्रीत की आवाजों में। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हितेंद्र दास ने लिखा है, इन्होंने भी हमें गुड आफ्टरनून कहा है, इवनिंग होने वाला है लेकिन आप हैं इसलिए गुड आफ्टरनून। वी कुमते ने लिखा है, आरजे पियोमते यो कशियात हिचवान रमतुरियल कशियत सुवाक्षीन रमतुरियल खान अलाउदु थेलु तुक्चे अगायम खब मेरी तरह ने कई अम गोई गोई तो जोक तरह तितो मेर। ओ अगला गाना

सनम पुरी की आवाज में हमने सुना मेरे महबूब कयामत होगी। आगे बढ़ते हुए आपके मैसेजेस हम पढ़ेंगे। मिंग मोहते ने लिखा है, उमदे नमस्ते ड्यूटी नुआम लेह रंती आ ओ नंग बहुन मन नुआम ओ मोया मुन पुई ही आना जी उमते ngakte pa par pari pu matlua ngate tan le nang mata na ron tini bahut bahut shukriya aap sabhi ka और आप सभी के लिए अगला, क्योंकि आपने पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही प्यारे मैसेजेस भेजे हैं, इसीलिए आप सभी के लिए मैं प्ले करने वाली हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के संगीत को हम सुनने वाले हैं।

ये था नेहा कक्कड़ की आवाज में, टोनी कक्कड़ के संगीत में, मिले हो तुम हमको। हम और आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे उमतई। सुनने और सुनाने के सिलसिले को जारी रखते हुए हम एक और गाना सुनेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है आपको विदा कहने का। और ये गाना जो हम सुनने वाले हैं वो है कयामत से कयामत तक मूवी का खूबसूरत गाना, बहुत ही लोकप्रिय गाना है, अकेले हैं तो क्या गम है। आमिर खान और जूही चावला पर फिल्माया गया ये फिल्म, खूबसूरत फिल्म जो कि बहुत लोकप्रिय साबित हुई थी 90s के दौर का। ये एक और सुपरहिट गाना आप सभी के लिए। इसी के साथ मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ने वाली हूँ ठीक 8:02 पर। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद आरजे मिकी आपके लिए लेकर आने वाले हैं मिजो डिवोशनल सॉन्ग्स। जुड़े रहिएगा एफएम जॉय के साथ।

0: कहानी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल

0: अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
0: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की

0: ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लैकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइन एप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड वेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: Bahut bahut dhanyawad.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco. And it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened. And if I were to say, what are the way I would put sort of contextualize what has happened? You've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give few examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala Pariyojana, the Sagarmala Pariyojana for logistics, PM Mudra Yojana, all these were parts of what I would call force multiplier. Add to that what Udaan scheme did for it.

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते। ठीक 8:04 हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा 8:30 बजे तक, यानी कि इन 26-27 मिनटों में हम आपका खूब मनोरंजन करने वाले हैं और सुनाने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गाने। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है सोनू निगम की आवाज में दीवाना तेरा। एल्बम का गाना है दीवाना, 90s के दौर का बहुत ही लोकप्रिय एल्बम है ये दोस्तों, और इसी से हम इस बात की शुरुआत करेंगे और मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगा दीवाना तेरा सोनू निगम की आवाज में।

दीवाना तेरा सोनू निगम की आवाज में जेल अजामा का मैसेज है। अजय ओम ते नमस्ते गुड इवनिंग ओ नंग पो नमस्ते गुड इवनिंग ले जनिन चु कनि टोंग लल मे रोन दिया दिक्ची ए तु नाई क ड्यू डी वेला यान इ मैसेज चार तुर हि वा खोप मे मो जनिन चु कनि टोंग लल नेक्स्ट सॉन्ग का इतान ले एफएम जो ओय गा थतु ततान पो अरोन दिनी स्माइली मोय तो तो खारोन दानी नंग पो ओ ललिन पुया फलकोन वेंग ला यान आजी प्ले ले तुरखा नंग माता ले लोंगा थवे जोंजों तान ले आजी जोंजों तान ले कथियान ते बेंग संग संग मी दतान रोन दिरी ला दिन पुय हन रोन हुम जाउ थे खप मे लोमम थी ने आप सभी के लिए अगला गाना किस्मत कनेक्शन से बा खुदा तुम्ही हो जो कि शाहिद कपूर और दिव्या बालन पर फिल्माया गया था और उसके बाद हम सुनेंगे चार कदम। पहले सुनते हैं बा खुदा तुम्ही हो।

बाखुदा तुम ही हो किस्मत कनेक्शन से, और आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत गाने हैं इस बार, और आगे हम सुनेंगे ओ साकी साकी बाटला हाउस से. लेकिन उससे पहले मैं मोती का मैसेज है, उमते इतान ले सा जोते तान रोदेनी. बहुत बहुत शुक्रिया मैं मोते आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ एफएम जॉय पर जुड़े हैं.

मम्मी वाइकिंग सगाना क्या सूरत है, और भी गाने हम सुनते रहेंगे। और आपको कैसा लगा दोस्तों, मैसेजेस के द्वारा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मैसेजेस अगर पढ़ने के लिए हैं तो हमें बहुत ही आनंद आता है। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना पीके का है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय मूवी थी चार कदम, शान की आवाज में सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा पर फिल्माया गया। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी और उसके गाने भी हिट हुए थे, उन्हीं में से एक चार कदम शान की आवाज में।

तुझे कितना चाहने लगे हम। अरिजीत के मनमोहक और दिल को छू लेने वाली आवाज में हमने ये गाना सुना, और मूवी का नाम था कबीर सिंह। मिथुन का संगीत और अरिजीत सिंह की आवाज, क्या कॉम्बिनेशन है दोनों का। जी हाँ दोस्तों, दोनों ने बहुत सारे हिट गाने दिए, उनमें से ये एक था। आगे बढ़ेंगे और ये जो है इस भाग का आखिरी गाना होने वाला है। जाते जाते हम सुनेंगे तुमसे ही, जो कि जब वी मेट मूवी का एक और लोकप्रिय गाना। इसी के साथ मैं आरजी ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी लास्ट सेगमेंट पर, यानी कि 10 बजे। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद आरजी रिंपुई आपके लिए लेकर आने वाली है वेस्टर्न म्यूजिक। जुड़े रहिएगा FM ज़ोए के साथ।

नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उम्दे। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10 बज रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा 10:30 बजे तक। और मैं आपको सुनाने वाली हूँ आपके मन पसंदीदा हिंदी फिल्मों के गाने एक बार फिर से और आखिरी बार इस रात के लिए। और इस भाग में हम कुछ चुनिंदा हिंदी फिल्मों के गाने सुनेंगे जो कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। और सबसे पहला गाना आप सभी के लिए जो मैं प्ले करने वाली हूँ वो होगा दिल का रिश्ता। इस मूवी का ये टाइटल ट्रैक है दोस्तों। अर्जुन रामपाल, ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा पर फिल्माया गया था दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत मूवी है और मुझे आशा है आपको जरूर पसंद आएगा। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में हम सुनेंगे दिल का रिश्ता।

यथा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में दिल का रिश्ता मूवी का टाइटल ट्रैक। आगे बढ़ते हुए हम आपके प्यार भरे मैसेजेस पढ़ेंगे। मिमोते ने लिखा है ओमते इतान ले ngai thatu te tan ro dini wan fil thin ta kem o tun thleng thleng min lamen pui hi kalom tak zet ani Durgesh Naganpure ka bhi मैसेज आया है। गुड इवनिंग अर्जुन, नमस्कार। आपको भी नमस्कार दुर्गेश नागनपुरे जी। अच्छा, आपको भी पसंद है दिल का रिश्ता। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। आगे भी हम प्ले करेंगे और भी खूबसूरत गाने आपको सुनने को मिलेंगे। ललदिन पुया ने लिखा है आरजे प्ले ले दुखा नगमा तान ले लोहाई थवे जों जों तान ले आरजे जों जों तान ले कठिया दे वेंग रंग संगमी ते तान पार पारी पू तान कुंते अमे मोई ते के वाला तुई क्वालमी ते तान ललिन पुया फलकोन वेंग लाई एफ एम आई सांग एम एम टू थ्लुंग तकिन इहोदोन न्या रोंती ने ए खैदिन पुई khatyang message chat to nu khachuan ni e tluang taka ka hote in be se yaro patian zara a lom om chin tak zet ani age barte hue hum sunenge ye ek aur khoobsurat gana pal pal har pal Shreya Ghoshal ki awaaz mein।

श्रेया घोषाल के खूबसूरत आवाज में हमने सुना पल पल हर पल लगे रहो मुन्ना भाई से। आपके मैसेजेस हम पढ़ेंगे। जी रजामा ने लिखा है, आज उमते नमस्ते, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग अरुंतिया। नेक्स्ट सॉन्ग का दुर्गेश जी तान लही तेन दास असम तान लही तान ओ क्या तकिन हो दुनिया रोती रन थ्यांग थ्याम लुतुक थनसक थ्याम लुतुकता। दुर्गेश जी और हिरेंद्र जी आपके लिए जेल जाम ने ये जो अगला गाना है वो आपके नाम किया है, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ओर से। ओ अन्ना यो इन लोम थू का शिरमल मोल से ओ अरुण सही दोन था सिया। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे, और स्पेशली ये डेडिकेट करूंगी मैं जेल जाम को, और हम सुनेंगे बदलापुर से जीना जीना।

जीना जीना बदलापुर से हम और आप जुड़े हैं एफएम ज़ोए पर, आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमते। आधा समय जो है हमारा गुजर चुका है, आधा और बाकी है, यानी कि 15 मिनट और है हमारे पास। दोस्तों, श्रोताओं में ऐसे भी हैं जो हमें मैसेजेस भेजते हैं, जो हमारे से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि वो हमें सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें मैसेजेस तो नहीं भेजते लेकिन हमें चुपचाप सुनते रहते हैं। आइए उन सभी के नाम इस बार मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, बेसब्रिया।

सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना। दो तीन गाने हम और सुन पाएंगे, लेकिन उससे पहले निनपुए ने लिखा है, निनपुए ने आजे पेरे तुखा नंगमा तान ले लोंगा इतवे जों जों तान ले आजे जों जों तान ले कछे हाते वेंग शंग शरों मी ते तान अरों तीनी ले निनपुए फल कोन वेंग लाई एफ एम आई सांग तुखा रों से खेर लो मासे कन सुई तेल खेर नी चुमो। और आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे यह है क्या हुआ तेरा वादा।

इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस भाग के आखिरी गाने की ओर और ये आज जैसा कि आप सभी को पता है आज रात का ये आखिरी भाग है, तो जाते जाते हम सुनेंगे तुम ही हो आकाश गांधी, हम सुनेंगे सनम पुरी और जोनिता गांधी की आवाजों में। और इसी के साथ मैं आज अमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द अगले हफ्ते बुधवार की रात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम जल्द मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिएगा FM जॉय के साथ।